0: Morning, Mr. Johan.
1: Good morning.
2: Rahul.
0: Hi. नौकर ने खून किया, नौकर ने खून किया, आओ.
2: ए, अरे रे रे रे, वो देखो.
0: आओ.